एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान न करी, ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करदा है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखन दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उना दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

परम सत्कार योग सत संग जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत अंध्या नूं संकोच के शरदा प्रेम भावना लैके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा विच पुजे आके गुरमुख प्यारियां तों गुरबाणी दा कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल दा पंजवां समाप्ति दा दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जिहड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रखे जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी कृपा होवे उदों सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकदा पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हुण दोवां दा संबंध किन्ना है। ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया के आखो झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी ये मजबूरी है मनुख दी समझ लो। गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे ओ कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उन्हूं बोलण दी लोड़ नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नूं देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उन्हूं बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिन्हूं दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उन्हूं कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलण दी लोड़ पई
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ ਹੁਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

सम्मान सत्संगी सज्जन पवित्र आत्मा गुरमुख सज्जन जितने भी माई भाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी पवित्र कदमा अंदर अमृत वेले दिया हाजरियां भर रहे हो सोने दरबार प्यारी दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो बहुत बख्शिश होवे बहुत गुरु कृपा करे ता अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हों ते गुरु का कर्म होवे जिन्हों ते गुरु की बख्शिश मेर अति रहमत होवे उन्होंने सत्संग दियां कड़ियां नसीब होंदियां हन कैसा आनंद है शब्द विच कैसा रस है शब्द विच पंक्तियां जो पढ़ रहे सां जपो ता एको नामा एक नाम नाली जोड़िया है एको नाम नाली सानू जोड़िया है होर किसे नाल नहीं जोड़िया एको जप एको साला एक सिमर एको मन या एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा पर सिमरना ही बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है कुल दुनिया के धंधे सौखे है एक प्रभु का सिमरन सब तो औखा जी बड़ा कठिन जी कोई समय ली एकाग्रता बख्श नहीं जितने मेरे सज्जन बैठे हो मिंट गिणवे रह गए 94 मिंट रह गए हैं वो मिनटा असा सफल करना है सब तो पहला मन चित बिरतिया टिकाव लिया एक बार प्यार ना आखो सदना आखिया जी आख लिया जी हूं कि बिखड़ा है कि मुश्किल है नहीं आखिया जाता सारे को आख्या ही नहीं गया सारे आपो अपने ध्यान में ये कठिन जी कुल दुनिया के धंधे सौखे ने एक वाहगुरु आखना मुश्किल है एक वाहगुरु आखना कठिन है ये मैं नहीं कह रहा ये गुरु बाबा कह रहे हैं रोज नहीं पढ़ते आखण औखा साचा ना बड़ा औखा है ये नहीं आख्या जाता आखो ना साधना देखिया जी नहीं एवं तो नहीं बाबा जी बाणी च कहते आप बचन सुनियो बुरे काम को ऊट खलोया बैड़ा कर्म करना हो ना अधी राती दौड़ पैदा नींदर की परवाह नहीं सुस्ती की परवाह नहीं बरादरी की परवाह नहीं मां प्यू की परवाह नहीं रिश्तेदारां दी परवाह नहीं करना बाबा जी कहंदे बुरे काम को ऊठ खलोया ते अगली पंक्ति पढ़ी जे कदी नाम की वेला पह पह सोया वाहिगुरु आखण वेले नूं नींदर आ जांदी वाहिगुरु आखण वेले नूं उंगलाण आ जांदी इहनूं सुस्ती पै जांदी इहदे कोलों नहीं आख्या जांदा इह कठिन सौदा जे इह बिखड़ा सौदा जे नाले सुस्त आदमी जे आख नहीं सकदा।

जुमला वह तुम बोलह स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्त एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सक मेहमान जो तिहारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी जस

जैसो गुरु उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। कह नानक सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जिहड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चौरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन
1: धीरे।
0: किस तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति रुक जाए, किस तरीके दे नाल ए मन जिहड़ा दशा दे समझ भज्जिया फिरदा है, सुपने विच भी नहीं टिकदा, सुत्तां पिआं भी टिकदा नहीं है, संगत विच भी नहीं टिकदा है, सब कुछ पा के भी टिकदा नहीं है। कबू जिगेड़ा ऊब चढ़त है, कबू जाए पायाले, लोभी जेरा थिर न रहत है, चारे कुंटा
1: पाले।
0: वस्तु नहीं मिलती दुखी हुंदा है, जदों मिल जाती है फिर होर वध दुखी हुंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे। केड़े तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति धीमी पै जाए, कुछ कंट्रोल विच हो जाए। बिन हर नाम ना शांत होए, गुरु जी कहिंदे हन बाणी दे विच, रब दे प्यारे दसदे हन भाई असीं विछड़े होए हाँ भाई, तू इस करके दुखी है, तू विछड़िया होया है, अपने मालक तो विछड़िया होया है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने मालक तो विछड़िया होया है, तू अपने केंद्र तो टुटिया होया है, तू अपने धुरे तो अलग होया होया है। जिन्ना चिर तू नहीं मिलता उन्ना चिर तेनू दुनियावी शांति घड़ी दी घड़ी भावे मिल जाए, परंतु असल शांति नहीं मिलेगी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: क्योंकि शांति भी तीन तरह की होंगी है, एक शरीर तल की शांति, शरीरक तल की शांति, शरीरक भोग पदार्थ खाण पीन दे नाल जवान थोड़ा चिर बस पेट भर जूगा, जवान थोड़ा चिर बस कह देगी, परंतु थोड़े चिर बाद फिर वही भुख लग जाएगी। इसे तरह मन, मानस भोग पदार्थ ते फिर कुछ चिर वास्ते मन तृप्त हो जाएगा, सदी भी तृप्ति नहीं है। आत्मक शांति जिहड़ी है, जो परमेश्वर दे नाल जुड़िया सत्संग सेवा से मन दे नाल मिलदी है, ओही सदीवी शांति है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ओही सदीवी शांति है, जो आके जांदी नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो उस नूं आत्मक शांति कहिंदे हन। सो नहीं तां गुरबाणी दे विच गुरदेव बहुत प्रमाण दे दे के खोल खोल के समझाते हैं। मैं तू बाकी छोटे मोटे दी गल्लां छड़ दे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए
1: सुखिया।
0: सारी सृष्टि का राजा क्यों ना बन जावे हे मनुख, सारी सृष्टि का। बाकी माड़ी मोटी गल छोड़ो, छोटा मोटा कोई अपना बन जाना, कोई अहुदा मिल जाना, कोई इलाके का बालक बन जाना, कोई होर कुछ माड़ा मोटा ज्यादा कुछ बन जाना, सारी सृष्टि का राजा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते हैं भाई, जेकर वह रब दे नाल नहीं जुड़िया, जेकर वह परमात्मा का नाम नहीं जपता, जेकर वह उस दाते नूं भुल गया है, फिर उसकी सारी सृष्टि की, सृष्टि के मालक की हालत की है,

0: सगल श्रेष्ठ को
1: राजा दुखिया
0: सुखी के में होएगा पाए। हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: परमेश्वर दा नाम जप के ही सुखी हो सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सत संगत, हुण फिर असीं सोचदे हां भी नाम जपना कि सानू नाम जपन नाल ही सुख मिल सकता है। फिर बड़ा औखा है नाम जपना, दुनिया छड़नी पवेगी, संसार दा त्याग करना पवेगा। हां संसार दा त्याग करना पवेगा, मोह ही दुखां दा कारण है, सारे दुखां दा कारण मोह है, सारे दुखां दा कारण अज्ञान है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: फिर तो भाई बड़ा औखा हो जाएगा, दुनिया छड़ दी, सारी दुनिया किवें छड़ जावांगे, किवें सारी दुनिया जंगल नूं तुर जाएगी। फिर तो असीं जावांगे नहीं गुरुद्वारे, ऐसे साधुओं किथे जावांगे, नहीं। गुरु नानक जी ने सत संत कृपा की थी, दुनिया नहीं छड़ाई परंतु दुनिया का मोह छड़ाता। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: बोलो धन गुरु नानक,
1: धन गुरु नानक।
0: दुनिया तो नहीं छड़ाई, जोगियां ने दुनिया छड़ाती, बड़े बड़े राजे पर्थरी वर्गे सात संगत उन्होंने कन्ना पाड़ के मुंदरां पवा दतिया, परंतु मन फिर भी शांत ना होए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: योग दे नाल भी योग सिद्ध आसन 84 ए पी कर रहा, बड़ी आरजा फिर जन्म हर सिंह संग ना
1: गहया।
0: तीर्थां दे बैठ गए, वेदां दे पाठ कीते, शास्त्रां दे पाठ कीते, बड़े तरह दी पूजावां कीतियां, फिर भी मन शांत ना। पाठ परिवार वेद विचारियो, निमर प्रियंगम साधे, पंच जना संग ना छोड़ के, अदक अहां बुद्ध बाधे प्यारे, इन विद मिल ना जाई। मैं किए कर्म
1: अनेका,
0: अनेकों ही कर्म कीते, मैं किए कर्म अनेका, हार परे स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध
1: विवेका।
0: बड़े जतन कीते, बड़े तरीके अपनाए, परंतु फिर भी मन शांत ना होया। बोलो
1: सतनाम
0: पर्थरी योगी श्री नारद जी की उपासना करते हैं, नारद जी की आराधना करते हैं, नारद जी के सुपने विच दर्शन हुए। हां भाई क्या चाहते हो? शांति, मुक्ति, परमेश्वर का मिलाप। 500 साल की मेरी उम्र हो गई है, कितने जोग कमाले हैं मैं, रिधियां सिधियां भी प्राप्त हो गई। अजे भी कहते हैं हे नारद,

वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आ कि जिदे घर धी पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेणे मारदे ने।

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहे? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरु अर्जुन साहब दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बाबचन कीता, गुरु क्या नू किधरू भाजड़ा पै गई। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र वास्ते कोई अरदास ना की थी। माता गंगा जी उदास होके वापस चले गए और गुरु अर्जुन साहब नु कहा, महाराज बाबा बुढ़ा जी ने पुत्र वास्ते अरदास नहीं की थी, सगा कहा कि गुरुआं नु किधरू भाजना पै गई, गुरु के महल नू

जिस तुम आप कराए। ते हुन तुसी दावा करके कह सकते हो, जदों घरों जाओगे ये दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं।

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ओही पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़े होया है ते जोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहंदे गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब दा दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी।

बाबा राम राय ने देहरादून आके अपना डेरा लाया ते दून तो इस जगह का नाम देहरादून पै गया। हुण बाबा राम राय औरंगजेब दे खुशामदी बन गए ते गुरु घर दे नालों नाता इन्हां दा टुट गया। ते दूसरे पासे गुरु हर राय साहब जी ने अपना अंत समा जान करके हुण गुरुगद्दी अपने

मेरी चिंता मिट गई है पर मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना सारिया थावां ते तू मेरा राखा है जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा मैनू डर किसदा जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी ये कौन कहेगा खसम वाला मालक वाला गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया वो मान की कर सकदा किसे ते जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा नहीं नहीं कह सकेगा उनू अपनी कमजोरी दा पता है लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई राख लिए तिन रखनहार सा ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पए उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां पर आपां पढ़ लईए जरूर सारी संगत पढ़ियो गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते फोटो ते इवें आएगी ना पता ते इवें लगेगा ना अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह दे हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता आपां वी माण करिए ना सारे तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी क्योंकि सत्संग है सचखंड है वैकुंठ है इसी महिमा दा पारावार नहीं जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे सारे पढ़ियो

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दा

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

आखन लगे दिलफरोश अज कुछ कीमत घट की है, कुछ मुल घटाया या कल वाला ही है। आखन लगा जी क्योंकि जिनस भी हो ही है, पदार्थ भी हो ही है, वस्तु भी हो ही है, इसलिए मुल भी रखा है। लेकिन सतगुरु कहन लगे लेकिन का क्या मतलब, कुछ ये रू रैत है। आखन लगा हां जी एनी है, जेडी ओदी अवस्था है, जेडी ओदी हालत है, उसने आप आखी कहन लगा महबूबा दे कूचे।

एक कागज लो, उस कागज ते लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नू प्यारी समझे,

गुरु नूं ए बिदावा लिख के दे आए, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख ने। अपने घरां नूं तुर पए। जदों भाई मान सिंह अपने साथियों दे नाल अपने घरां नूं पहुंचे, घरवालियां ने पुछया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा।

किले विच छड़ के आ गए, किले नू घेरा पे है, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नू छड़ के

सिख ने। ए गल करां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्हां ने कहा, ठीक है, अज गुरु नूं छड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवोगे? पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तो सिख गवा के जीवना को जीवना है। एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे, गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, ता असी शुकर करना सी साडे पति धन ने जेड़े सेवा करदे मरे। अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नूं छड के आए हो, मौत तो बहुत डर लगदा, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे। इस तरह करो, इस साडियां चुनियां लै लो, पगां ला दियो, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दित्तियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कस्से खोल के सानू दियो, कमर कस्से करके

खून ने फिर उबाला खादा कि मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं

गुरु साहबाने कपूरे नुकेया कपूरिया साढ़े पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लेके आ रहे है, तू अपना किला दे ताकि इथे असी ओदे नाल दो हथ कर लीए। कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है पर औखा समा देखिया ताए भी मुंह फेर गया। कहन लगा महाराज मुगलां दा राज है, मैनू मुगलां कोल डर लगदा है, जे तुहानू किला दिता ते मुगल मैनू खत्म कर देने, वजीर मैनू खत्म कर देवेगा, बादशाह मैनू सजा देवेगा। ता गुरु साहिबा ने कहा जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानू लोड़ नहीं। अज भी इहो जे लोक आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने, सिखी छड्दे ने, अमृत तों दूर ने, पर जिहड़े इंसान अपने धर्म च पक्के नहीं, अपने गुरु दे उपदेश

हड्डियां दा मजबूत कमर कस्सा कीता है। ए है भाई मां सिंह म्यान विचू कृपान खिची जकारा छड़िया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार के किया। भाई मैनू अज गुरु दे हुकम दा पता लग गया। मैं अज ये फैसला कर लिया है हम तो

लकीर टपी ते ए गल कही भरावो भैन मरद है भैन लड़ेगी वीर घरा नू जान ताना सुनिया सारिया लकीर टपी हुण सलाह कीती ए ढाब सुखी है इथे पानी नहीं इथे मोर्चे बंदी कर ली है दुश्मन दे नाल इथे दो दो हथ कर लीए ताकि गुरु साहब होर अगे चले जान अपना इंतजाम कर ले। ए गल सारिया ने विचार के

इसने फतेह का डंका बजाया, वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुपे है, सैंक दा पे है, सह टुटदे ने। हुण भाई मान सिंह अरदास

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं, हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे।

तेरी गोद विच जान निकल जाए होर मैनू की चाहिदा तेरे चरणा विच जगह मिले इस तू वड़ा सुख और केड़ा हो सकता है राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे अपने चरणा विच जगह दे और कुछ नहीं चाहिदा। जदों ये गल कही साहबा ने भाई मान सिंह नू अपने गल दे नाल लाया। भाई मान सिंह ने हुण आखरी वारी धन सतगुरु कहा मुंह बंद हो गया।

नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्नू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे ने। वो पूरा कदी नहीं होया जिहदा जीवन उच्चा नहीं। किन्नी कृपा होई भाई मान सिंह, एक ओदा मरना जिहड़ा गुरु तू बेमुख होके मरदा है, इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा, एक मरना भाई मान सिंह दा उन्हां दे

कुछ कह रही, वाणी आवाज दे रही, वाणी कुछ बोल रही, जीव सुन वाणी की कहंदी, वाणी तेनु आवाज क्यों मार रही, वाणी तेनु क्यों बुला रही, ते वाणी की आख दी है, सुख माणी सुख अमृत प्रभ नाम सुन वड भागिया, सुख माणी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जिना कै मन विश्राम सुन वड भागिया, हर अमृत

ते बाबा संगत विचों बिछड़ गया है। संगत अगे लंघ गई ते बाबा पिछे रह गया है। रस्ते दे विच खलोता है, पांड चुकी नहीं जांदी, तुरिया नहीं जांदा, ते ऐ मना हुण की करां। जंगल वियावान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावां। उच्ची देनी आवाज मारी, बे है कोई हो जाया जिड़ा मेरा भार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा। जदों बाबे ने उच्ची आवाज मारी ना, बाबा की तक रहा है, ओ सामने झाड़ियां वलों एक नौजवान गोल पगड़ी लंबा चोला, ये नौजवान आया, बाबा किथे जाना है। बई मैं सतगुरां दे दर्शन करन चलिया ते संगत विचों बिछड़ गया, पार मेरे कोलों चुकिया नहीं जा, लिया बाबा तेरी पांड मैं चुक लैंदा। बाबे दी पांड सिर ते चुकी ते बाबे दा हाथ अपने मोढ़े ते रख लिया।